0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह की ठीक 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में

102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में गाई इस मातृवंदना से।

अभी आपने समूह स्वर में मातृवंदना सुनी और आइए इस मातृवंदना के बाद अब सुनते हैं ये शिव भजन। स्वर है शर्मा बंधुओं की और रचना है पंडित रामानंद शर्मा की।

शर्मा बंधुओं के स्वर में अभी आपने ये शिव भजन सुना। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर की आवाज़ में कवि नारायण अग्रवाल की ये भक्ति रचना।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम अर्चना के आखिर में आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में संत तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 54वां भाग आप सुनेंगे और मुख्य गायक स्वर होगा मालिनी नामव्याल का। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा 6:40 से। संस्कृत में समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:55 पर। 7:00 से सुना जा सकता है दैनिक वैचारिक्रम सुबह सुबह। 7:05 का समय है कार्यक्रम कृषि संकेत का। इस कार्यक्रम का आज का विषय है माटी में फास्फोरस का महत्व और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के सिंह। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 7:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत हम लेकर आएंगे 7:20 से। कुछ गैर फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता के तहत। प्रसारण समय होगा 7:45 का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: समाचार प्रभात का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से 8:00 से। बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा 8:15 पर। 8:30 से महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन सकती हैं बिंदिया। और 9:00 से 9:50 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और 9:50 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 10:00 से। 10:05 से आप सुन सकते हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। 11:00 से होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 5:02 पर होगा युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आप सागर केंद्र की प्रस्तुति सुनेंगे। संगीत सरिता का प्रसारण समय होगा 5:30 का। सदाबहार गीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:30 से और लोकरंग कार्यक्रम सुना जा सकता है 6:45 पर और 7:20 पर। 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे ग्राम सभा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुना जा सकता है 8:00 और 8:20 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम होगा हर रोज की तरह 9:00 से और 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, 10:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसके पश्चात आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 54वां भाग आप सुन रहे हैं और मुख्य गायक स्वर है मालिनी नामव्याल का।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म का गीत। आवाज़ है मुकेश की, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब आपको सुनवाते हैं काली टोपी लाल रूमाल फिल्म से ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है चित्रगुप्त का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
3: ओ
2: जैसे यूपीआई से।
3: अच्छा
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी।
3: आप भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी के सागर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
0: एजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बूंद जो बन गए मोती फिल्म का ये कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है।

0: कारणस्य संशोधन विधेयकं विंशति षड्विंशति उपस्थाप्येते। सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकं, आयकर संशोधन विधेयकं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयकं विंशति षड्विंशति चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्वसंध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसद भवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः आसीत्। अस्यां सभायां चत्वारिंशत् राजनैतिक दलानां 50 तोप्यधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुख विषयेषु रचनात्मक चर्चासु भागग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात चुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं कृतवन्तः। श्री बिरला वर्यः रचनात्मक विचार विमर्शाणां सार्थक सहभागित्वस्य सर्वोच्च संसदीय परंपराणां पालनस्य च महत्वमपि अधोरेखितवान्। दिल्ल्यारक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् अद्य आरभ्यमाणस्य संसद सत्रस्य दृष्ट्या नवदिल्लीमण्डले कस्यापि विरोधयात्रायाः प्रदर्शनस्य च अनुमतिः न प्राप्तास्ति न प्रदत्तास्ति। सामाजिकांतरजालीय पटले दलेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2003 धारा 63 अनुवर्तितास्ति, अतः जंतर मंतर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5 जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्ति इति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति। भोपालनगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेषसभायां मध्यप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन यूनिफार्म सिविल कोड UCC इति विधेयकं स्वीकृतम्। वार्ताहरान् संबोधयन् मुख्यमंत्री मोहन यादवः अवदत् यत् UCC सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति। सः अवदत् यत् UCC विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लङ्घयति इति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशः अतिरिक्त समये गतविजेता अर्जेंटीना देशं 1-0 इत्यंकेन पराजित्य 26-2000 फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।
2: संस्कृत में समाचारों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं का

कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। हर व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है, बिना परिश्रम किए सफलता मिलना संभव नहीं है। श्रोताओं, अगर कोई सफलता शॉर्टकट में मिली है तो उसकी उम्र भी कम ही होगी। कहा भी गया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है, तो दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब भी हम किसी लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिससे हमारा सारा जीवन ही बदल जाता है। मगर श्रोताओं, हालात कैसे भी हों, हमें अपनी मेहनत करने का क्रम जारी रखना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बगैर कठिन परिश्रम किए किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचा हो। जीवन में कठिन परिश्रम ही वो चाबी होती है जो हमारी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलती है। ऐसे में जीवन में बिना कठिन परिश्रम के ना तो हमारे सपने सच होते हैं और ना ही हम उस सफलता से खुश हो पाते हैं। जीवन के सुनहरे अवसर कड़ी मेहनत के रूप में ही छिपे रहते हैं, बस जरूरत उन्हें पहचानने की होती है। श्रोताओं, मेहनत और लगन से हमारे लिए मंजिल पाना आसान हो जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। निरंतर और सतत मेहनत करके हम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से और सार्थक तरीके से कर सकते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो मात्र हमारे सपनों में था। इसके लिए हमें किसी की नकल या देखा देखी करने की भी जरूरत नहीं है। आवश्यकता है तो बस अपनी काबिलियत जानने की और उस मंजिल की ओर सतत परिश्रम करते रहने की। कई बार कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। इस जगह पर श्रोताओं, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि घबराने के बजाय उस परिस्थिति का सामना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करें। जीवन की हर समस्या का समाधान तो होता ही है, आज नहीं तो कल समस्याएं हल होंगी ही। श्रोताओं, अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि परिश्रम हमें संस्कारी, अनुशासित, धैर्यवान और समय का पाबंद बनाता है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह हम सबको भी अपना कार्य संवारने के लिए कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। इस बात के साथ ही कि आप सभी के किए गए प्रयास सार्थक हों, दीजिए आज के लिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुबह एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। श्रोताओं, आज का विषय है माटी में फास्फोरस का महत्व, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के सिंह।
1: फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी मोबिलिटी बहुत कम है, जिसकी गतिशीलता बहुत कम है, इसलिए फास्फोरस की जो उपयोग क्षमता है वो बहुत कम है। पौधों द्वारा 20-25% जो भी देते हैं उसका केवल 20-25% जो है पौधों द्वारा लिया जा पाता है, बाकी मिट्टी में रहता है, अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए जरूरी यह है कि भूमि में, फिर वही बात आती है कि जैविक कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर जीवांश कार्बन हमारी भूमि में अच्छी मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, 0.5% से ऊपर है, 0.6% से

0: या यानी अस्फुर घोलक जीवाणु, अस्फुर घोलक जीवाणु का उपयोग हम मृदा उपचार के माध्यम से करें। अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट में 50 किलो खाद में 2 किलोग्राम पीएसबी कल्चर मिला दें और उसको 6-7 दिन के लिए रख दें, फिर खेत में उपयोग करें, 1 एकड़ क्षेत्र में उपयोग करें। इसी प्रकार से हमारे पास जितना रकबा है उस हिसाब से हम कल्चर लेकर के और गोबर की खाद में मिला के रख के खेतों में डालें, बखन्नी के समय खेतों में उपयोग करें, तो जो फास्फोरस की उपयोग क्षमता है वो 40-45% या 50% तक पहुंच सकती है। प्रारंभ में जब गोबर की खाद में मिला के रखें तो उसको अलग ढेर में 50 किलो गोबर की खाद में 2 किलोग्राम कल्चर, चाहे वो नत्रजन वाला कल्चर हो या अनाज फसल के लिए एजेट हो, 50 किलो के खाद की ढेर में अलग मिला के रख दें और पीएसबी कल्चर दूसरे 50 किलोग्राम के ढेर में अलग मिला, लेकिन डालते समय दोनों को आपस में मिला करके सीधे खेत में बखन्नी से पहले डाल, तो इससे जो है उपयोग क्षमता हमारे फास्फोरस की और नत्रजन की दोनों की बढ़ती है और फसलों को अधिक मात्रा में तत्व प्राप्त हो। तो ये दूसरा तरीका है जो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि किसान भाई गोबर की खाद इनके यहाँ कम हो पाती है या गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छी ढंग से नहीं बना पाते, जबकि बहुत पहले से इसका जो है प्रचलन इसके बारे में बताया जा रहा है कि नाडेप टाके में खाद कैसे बनाएं, फिर भी किसान भाई उसको बनाना नहीं चाहते या बनाने में दिक्कतें आती हैं, जो भी समस्या हो, तो उसकी जगह कल्चर एक सशक्त माध्यम है। तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी मोबिलिटी बहुत कम है, जिसकी गतिशीलता बहुत कम है, इसलिए फास्फोरस की जो उपयोग क्षमता है वो बहुत कम है। पौधों द्वारा 20-25% जो भी देते हैं उसका केवल 20-25% जो है पौधों द्वारा लिया जा पाता है, बाकी मिट्टी में रहता है, अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए जरूरी यह है कि भूमि में, फिर वही बात आती है कि जैविक कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जीवांश कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर जीवांश कार्बन हमारी भूमि में अच्छी मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, 0.5% से ऊपर है, 0.6% से ऊपर है, तो निश्चित रूप से जो 25% है वो बढ़ करके लगभग 30-35% या 40% तक पहुंच सकता है। यदि हम जैव उर्वरक जो फास्फोरस के लिए आता है उसका नाम है पीएसबी, अस्फुर घोलक जीवाणु का उपयोग हम मृदा उपचार के माध्यम से करें, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट में 50 किलो खाद में 2 किलोग्राम पीएसबी कल्चर मिला दें और उसको 6-7 दिन के लिए रख दें, फिर खेत में उपयोग करें, 1 एकड़ क्षेत्र में उपयोग करें। इसी प्रकार से जब हम हमारे पास जितना रकबा है उस हिसाब से हम कल्चर का उपयोग लेकर के और गोबर की खाद में मिला के रख के खेतों में डालें, बखन्नी के समय खेतों में उपयोग करें, तो जो फास्फोरस की उपयोग क्षमता है वो 40-45% या 50% तक पहुँच सकती है। 50 किलो गोबर की खाद में 2 किलोग्राम कल्चर, चाहे वो नत्रजन वाला कल्चर हो या अनाज फसल के लिए एजेट हो, तो 50 किलो के खाद की ढेर में अलग मिला के रख दें और पीएसबी कल्चर दूसरे 50 किलोग्राम के ढेर में अलग मिला, लेकिन डालते समय दोनों को आपस में मिला करके सीधे खेत में बखन्नी से पहले डाल, तो इससे जो है उपयोग क्षमता हमारे फास्फोरस की और नत्रजन की दोनों की बढ़ती है और फसलों को अधिक मात्रा में तत्व प्राप्त हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत और हमारे साथ विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए के सिंह। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, 24 जुलाई तक चलेगा। अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त। प्रदेश में समान नागरिक संहिता की दिशा में बड़ा कदम, कैबिनेट ने यूजीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को दी मंजूरी, आज विधानसभा में होगा पेश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का जताया अनुमान, दमोह मंडला और डिंडौरी में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम की काबिलियत और विज्ञान के प्रति जुनून ने देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम को भी बधाई दी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल विधानसभा पहुंचकर सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल की भी कई सूचनाएं मिली हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। अब ये विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के 10,54,000 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर की गई। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंशाना ने बताया कि प्रदेश में 2016 से 2025 तक फसल बीमा योजना के तहत करीब 30,942 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के तहत किसानों से ऑनलाइन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 3,00,000 रुपए तक का कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि झाबुआ जिले में करीब 3,125 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले का कड़कनाथ मुर्गा और टमाटर देश भर में पहचान बना रहे हैं। ये महोत्सव अब अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बैतूल जिले में महिलाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच 4 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हुआ है। इससे 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जुड़ेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैतूल जिले की 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के जरिए आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े की मौजूदगी में 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच करीब 4 करोड़ का MOU हुआ है। परियोजना के तहत महिलाओं

0: के यहाँ नेट शेड स्थापित किए जाएंगे जहाँ वे साल भर सब्जियाँ और अन्य उद्यान की फसलों का उत्पादन कर सकेंगी। कलेक्टर ने कहा कि परियोजना जिले में महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों से समन्वित रूप से कार्य करने और कार्यक्रम को प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जीवन ज्योति CLF की सचिव दीदी राधिका भगत ने बताया कि इस योजना से दीदियों की आय बढ़ेगी।
1: जो फसल अपन लगाते हैं उसमें इल्लिया कीटनाशक सारी प्रकार की बीमारियां होती है, सेटनेट में यह बीमारियां नहीं होती और फसल सुरक्षित रहती है, जिससे दीदियां अच्छी आय अर्जित कर सकती है। अब इसी प्रकार की प्राकृतिक खेती करके अपना परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकती है।
0: बैतूल से मयंक भार्गव।
2: प्रदेश पुलिस ने बीते 6 दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए से अधिक की चोरी की गई संपत्ति बरामद कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुना पुलिस ने चेन चोरी के 8 मामलों का खुलासा कर 3 अंतर्राज्यीय गिरोहों के 13 आरोपियों को पकड़ा। वे भोपाल GRP ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी, बड़वानी, सीहोर और खरगोन में भी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल जिले से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कल करीब 260 श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का स्वागत कर हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक 4 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव किशनगढ़ कोर क्षेत्र के ब्रजपुरा वन परिक्षेत्र में मिला है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि बाघ के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्राकृतिक मौत लग रही है। पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। ये हीरा 13.16 कैरेट का है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वर्ष 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज दमोह, मंडला, डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित 47 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 388 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव आज और कल 2 दिवसीय शिवपुरी प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों और आमजन से बातचीत करेंगे। बालाघाट में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने हाल ही में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की शालाओं, छात्रावासों और आश्रमों का औचक निरीक्षण किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा जिले में ऑटो रैली, पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक, छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। वहीं मंडला जिले की बिछिया पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिंडौरी में आकांक्षी विकासखंड महेंद्रवानी के ग्राम सारसटोली में पशु चिकित्सा शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जबलपुर में केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 314 करोड़ 18 लाख रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित पर्यटन क्विज 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को शहर के एक्सलेंस स्कूल में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल की। साहू नगर यवतमाल से ये फरमाइश आई है राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी की। इसी गीत को सुनने का अनुरोध हमें पत्र द्वारा प्राप्त हुआ। ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर से एन आर श्रीवात्री, श्रीमती केशव श्रीवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और समस्त श्रीवात्री परिवार का। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु, यश अवधीश, प्रेम नारायण, रामदास, रमाकांत दुबे, प्रमोद सैनी, विवेक, जीवनलाल और सुजीत भाई का। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म तेरे घर के सामने का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है SD बर्मन का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हाथ ही मेरे साथी, जी हाँ श्रोताओं, ये है वो फिल्म जिसका गीत अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमल अनेजा की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप की व्हाट्सएप फरमाइश मिली है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की ये फरमाइश मिली है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत।

0: चुपके चुपके
1: एक दूसरे से हम जो

0: आ ठंडी हवा
1: आहा थम जा ए काली घड़ा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
5: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
6: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
4: बात बन जाए,
6: 287 मेरी चाय।
7: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये अगली फरमाइश हम ले रहे हैं जो हम तक पहुंची है मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर। गांव व डाकघर निम्नाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। एमएलबी रोड ग्वालियर से ये व्हाट्सएप फरमाइश है सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी की। बाबा कुटीर रायगढ़ से लिखने वाले हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है संतोष खड़से और विनोद खड़से की। हमारे ये सभी श्रोतागण सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत की ये आखिरी पेशकश, फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोतागण हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। बघेरा दुर्ग से ये फरमाइश मिली है संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव की। डोंगरपुर छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ महासमुंद से लिखने वाले हैं कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्ल्यू

बली जाटव और सोनम बली जाटव की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम सभी सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:45 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम संगीत सरिता का। तो आइए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राहत फतेह अली खां के गाए इस गैर फिल्मी गीत से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम है संगीत सरिता, और आइए अब आपको सुनवाते हैं श्वेता की आवाज़ में श्याम अनुरागी का लिखा हुआ ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती है, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के आखिर में आपको सुनवाते हैं शान का गाया हुआ ये गीत।

शान के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की

0: सहायता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: UCC विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48

0: इस टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला लोकगीत है राजू पटेल और धनीराम सेन का गाया हुआ। आइए सुनते हैं ये गणेश वंदना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुरेश चंद्र तिवारी की आवाज़ में ये वर्षा गीत।

सबरी घर बार से, हाँ सबरी घर बार से, बेदोरे घर बार से, कुबजा घर बार से, अरे कुबजा घर बार से, जब

का घर भर से सुदामा घर भर से गण का घर भर से सुदामा घर भर से हाँ गण का घर भर से सुदामा घर भर से

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं महेश कुमार अनुरागी का गाया हुआ ये मल्हार।

महेश कुमार अनुरागी के गए इस मल्हार के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बिंदिया।

मौसम की लुका छुपी यही संदेशा लेकर आई है, आपसे मिलने फिर आपकी सखी आई है। स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बिंदिया में। स्वीकारें अपनी रेडियो सखी ऋतु गौतम का नमस्कार। सखियों, हमने कर ली है आपसे मुलाकात और हम आपसे करेंगे बहुत सारी बात, आपकी बात, हमारी बात, घर आंगन की बात, और सबसे पहले कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ यूं ही मनोरंजन की बात।

0: सखियों, आप हैं कार्यक्रम बिंदिया में और अब हम बात करेंगे घर आंगन की। सखियों, घर आंगन में आज मैं अपनी सभी सखियों से एक ऐसी बात कहना चाहती हूं जो एक प्रेरणादायक संदेश है। बहनों, सखियों, हम हर महिला केवल घर की जिम्मेदारी निभाने वाली ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश की शक्ति भी हैं। और ये बातें हम जानते भी हैं, है ना सखियों। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो आपके साथ पूरा परिवार और समाज भी आगे बढ़ता है। आज के समय में हर महिला को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह याद रखना है कि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती है। अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, अच्छी सोच और सही सलाह, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। तो बहनों, हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और हर महिला को उसके अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अवसर देंगे। तो सखियों, यही सबसे बड़ी हमारी प्रेरणा है, यही संदेश है और यही आप सबसे हमारा निवेदन भी है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, प्रेरित करें और हमारी सभी सखियां एक दूसरे का साथ हमेशा देती रहें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और सखियों, अब हम बात करते हैं ज्योति पुंज क्रम की। सखियों, ज्योति पुंज क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी साहसी महिला की जिन्होंने अपने आत्मबल, अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। जी हां सखियों, प्रेरणा की मिसाल अरुणिमा सिन्हा। आज हम जानते हैं अरुणिमा सिन्हा, जिनका जन्म 20 जुलाई 1988 को हुआ था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। वर्ष 2011 में एक रेल दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। यह घटना किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे कठिन प्रशिक्षण लिया और 21 मई 2013 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। भारत की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। अरुणिमा सिन्हा, आज यह नाम हर कोई जानता है। आपने अपने जीवन में कई संघर्षों को, कई परेशानियों को सहा, लेकिन आज अरुणिमा सिन्हा का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा आत्मविश्वास और हौसला मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। उनकी कहानी विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को यह संदेश देती है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को हमें हटाना है, घबराने के बजाय उनका साहसपूर्वक सामना करना है। 20 जुलाई, आइए आज उनके जन्मदिन दिवस पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके संघर्ष, साहस और उपलब्धियों से प्रेरणा लेने का संकल्प लेते हैं। और अब लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सखियों अब हम बात करते हैं हमारी आपकी। जी हाँ सखियों, ज्योति पुंज क्रम की बात हुई, घर आंगन की बात हुई, और अब है सबसे ज़रूरी बात जो हमारी बात हमारी सखियों से है, हमारी बहनों से है। और हर बार हम आपके लिए कोई ना कोई ज़रूरी जानकारी लेकर आते ही हैं, और ये बातें हमारी सखियों को पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए कई बातें लेकर आते हैं जिससे हम उनसे मिलते रहें, उनसे बात करते रहें और उनके मन में भी बसे रहें। जी हाँ सखियों, अब हमारी बात आपसे यूं होती है सखियों कि जुलाई का महीना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मौसम की जो करवट है वो बदल रही है। सुहाना मौसम बस आने ही वाला है, भले ही थोड़ा सा मानसून रूठा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी चारों ओर हरियाली नज़र तो आने ही लगी है ना सखियों। रिमझिम फुहारों का असर भले ही धीरे धीरे है, लेकिन मिट्टी की भीनी खुशबू की याद हमें आज ही आ रही है। प्रकृति को नया जीवन देने के लिए ये मौसम बहुत ही ज़रूरी है, और हमारी सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा हमारी शरीर और हमारा मन सब कुछ करवट लेता है ना बहनों। हाँ, और मौसम के अनुसार हमें अपने घर का, अपने परिवार का, सबकी सेहत का और स्वयं का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। बात तो बहुत ही ज़रूरी है सखियों कि बरसात का मौसम आते ही चारों ओर बदलाव नज़र आने लगता है। भले ही रिमझिम फुहारें अभी थोड़ा थोड़ा रुकी हुई हैं, लेकिन जल्द ही आ जाएंगी, मौसम को सुहावना कर देंगी और कुछ परेशानियां भी खड़ी कर देंगी। तो सखियों, पहले से ही हम इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी अधिक होने के कारण बैक्टीरिया वायरस तेज़ी से फैलने लगते हैं। इसलिए इस समय खान पान में थोड़ी सी सावधानी हमें कई बीमारियों से बचा लेती है। तो सबसे पहले सखियों बात करते हैं कि कोशिश करें कि हम हमेशा ताज़ा और घर का बना भोजन खाएं। ये बात तो हमारी बहनें जानती ही हैं, लेकिन फिर भी परिवार के बाकी लोग, खास तौर पर बच्चे, बाहरी भोजन के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि आज ये मंगा के खाएंगे। और घर की माएँ बहनें हमेशा यही समझाती हैं कि इस मौसम में घर का बना भोजन, पौष्टिक भोजन, गर्म भोजन सबसे ज़रूरी होता है। तो सखियों, इन बातों का ध्यान तो हमें ही रखना है, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सुपाच्य, हल्का, पौष्टिक और घर का बना आहार ही बेहतर रहता है। सखियों, अपने भोजन में दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज ज़रूर शामिल करें। ये बात हम हर बार अपनी सखियों को बताते हैं, कहते हैं कि मौसम के अनुसार फल सब्जियों का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। अदरक, लहसुन, हल्दी, तुलसी जैसे प्राकृतिक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं, और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और उबला पानी पीना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना ही है। और अब जो मौसम आ रहा है वो है नमी वाला, बारिश वाला, तो इस मौसम में हमें गर्मा गर्म खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शाम के समय चाय के साथ गर्मा गर्म कुछ मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। लेकिन लेना क्या है इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पौष्टिकता, प्रोटीन, ये चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो चाय के जगह आप गर्मा गर्म सूप ले सकते हैं, और आप चाय पीना ही चाहती हैं तो साथ में थोड़ा सा भुना हुआ चना, भुना हुआ मक्का, ये भी आप ले सकती हैं, ताकि आपको पौष्टिकता और स्वाद दोनों ही मिलते रहें, है ना। लेकिन ध्यान रखें, तले भुने खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में ही लें। और सखियों, अब बात करते हैं स्वच्छता की, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी तो हमारी बहनों की ही है और हमारी है। तो सखियों, स्वच्छता की बात हम जब करते हैं तो ध्यान रखें कि घर के अंदर की बात तो हमें हमेशा ही याद रहती है कि हमारा घर, हमारा फर्श, खिड़की, दरवाजे सब स्वच्छ हैं, और इन्हें हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से साफ करते हैं, लेकिन घर के बाहर आसपास इनका ध्यान रखना भी इस मौसम में ज़रूरी हो जाता है। तो घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण बनता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। यदि बारिश में भीग जाए तो घर पहुंचकर तुरंत ही सूखे कपड़े पहने। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे इन बातों को नहीं मानते, कभी गीले गीले कपड़े पर ही पहने रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो परेशान होते हैं, उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार पकड़ लेता है और फिर पूरा घर परेशान हो जाता है। ऐसा होता है ना सखियों, आपके साथ भी? हाँ, तो हमें अपने बच्चों का, घर के बुजुर्गों का, सभी का ध्यान रखना है और स्वयं का ध्यान भी रखना है। और कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लेना भी ज़रूरी है। बहनों, बरसात का मौसम हमें यह भी सिखाता है कि जैसे धरती हर बारिश के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा बनाए रखना चाहिए। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा ही हमारी बताई हुई बातों का ध्यान रखती रहें, हर मौसम का आनंद लें, स्वस्थ रहें। बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और सखियों, इतनी सारी बातें हमारी सखी ने आपको बताई, ऐसा आप सोच रही हैं ना? लेकिन बात जो है वो मौसम अनुसार खान पान पर तो आई है, लेकिन व्यंजन विधियों पर नहीं आई है ना सखियों। तो आज क्यों ना ये बात हो जाए सखियों कि मौसम जो है वो करवट ले रहा है और मौसम का आनंद लेने के लिए हम भी तैयार रहें, क्योंकि मौसम तो अपने अंदाज में बदलेगा ही और जो मौसम आएगा वो बहुत ही खुशनुमा होगा और इस मौसम में स्वादिष्ट और हल्के और सुपाच्य भोजन के लिए हमें बनाने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि दिन में तो पर्याप्त मात्रा में हमने पूरा भोजन कर लिया, लेकिन शाम के समय, रात के समय कुछ हल्का खाना मन को भाता है और घर के लोगों को भी भाता है ना? तो सखियों, अब आज हम जानेंगे पौष्टिक स्वादिष्ट मूंग दाल का चीला, जो पचने में हल्का और प्रोटीन से भरपूर होता है और मौसम के अनुसार गर्मा गर्म घर का बना खाना बेहतर होता है। तो सखियों, जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, नोट कर लीजिए या फिर हमें ध्यान से सुन लीजिए। तो सखियों, इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो एक कप धुली मूंग दाल, यानी कि 3-4 घंटे भिगोई हुई चलेगी। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, इसे आप चाहें तो ले भी सकते हैं, और आप यदि प्याज वगैरह यूज नहीं करते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा और सेकने के लिए थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आपको उपयोगी हो। और अब इसे बनाने की विधि हम आपको जल्दी से बता देते हैं। भींगी हुई मूंग दाल को अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लें। हम जानते हैं सखियों कि मूंग दाल चीला हमारी बहनें भी बनाती हैं, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आज हम ये विधि आपको बता रहे हैं। इसमें प्याज, हरा धनिया, जीरा, नमक मिलाएं, गर्म तवे पर थोड़ा सा हल्का सा तेल या घी लगाएं और घोल को तवे पर फैलाकर दोनों ओर सुनहरा होने तक सेंक लें। धीमी आंच पर सेकें ताकि ये अंदर तक सिक जाए और हरी चटनी या दही के साथ गर्मा गर्म इसे परोसें। बारिश के मौसम में हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं और ध्यान रखें, गर्मा गर्म घर का बना ये चीला आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, स्वाद भी मिलेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और तारीफ भी पाएंगे। जी हां सखियों, ये तो हुआ हमारा मूंग दाल चीला। और अब एक पालक की टिक्की। और हम आपको बता देते हैं चलते चलते, तो सखियों हम जानते हैं कि हमारी सखियां बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, लेकिन मक्के और पालक की बनी टिक्की इस मौसम में स्वाद और पोषण से भरपूर रहेगी। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो 1 कप उबले हुए मक्के के दाने, 1 कप बारीक कटा पालक, 2 उबले आलू, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच जीरा नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और सेकने के लिए थोड़ा सा तेल या घी आप दोनों ले सकते हैं। अब इसे बनाने की विधि बता दें। मक्के के दानों को हल्का सा दरदरा पीस लें, इसमें उबले आलू, पालक, बेसन और सभी मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। छोटी छोटी गोल टिकिया बनाएं, तवे पर थोड़ा सा तेल या घी डालकर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें। ध्यान रखें सखियों, हल्का और धीमी आंच पर सेकें ताकि ये अंदर तक सिक जाएं। हरी धनिया की चटनी या दही के साथ गर्मा गर्म परोसें। स्वाद, सेहत और तारीफ सब है इसमें, तो खाएं, खिलाएं, तारीफ पाएं। और अब सखियों कुछ थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं और चलते हैं मनोरंजन की ओर।

इस गीत के साथ ही घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई इशारा कर रही है कि समय हो चला है अपनी सखियों से अनुमति लेने का। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, अपनी रेडियो सखी ऋतु गौतम को कार्यक्रम बिंदिया से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बिंदिया। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आइए करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में एक पारंपरिक रचना जो गुलाब गैंग फिल्म की थी। और दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ये दिवस 20 जुलाई 1969 को मानव द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरकर मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिवस का उद्देश्य चंद्र अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा, कल्पना और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इसे केवल आस्था और साहित्य का विषय माना जाता था, है ना? किंतु आधुनिक विज्ञान ने इसे अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। आज अनेक देश चंद्रमा पर जल, खनिज संसाधनों तथा भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। भारत ने भी चंद्र अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं के परमाणु को खोजकर विश्व को एक नई दिशा दी, जबकि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुखविंदर सिंह और KMMC सूफी एंसेंबल की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना सुनिए।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनीति चौहान की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों आज विश्व शतरंज दिवस है यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस दिवस का उद्देश्य शतरंज के खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वीर भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरील धड़कन से। लीजिए सुनिए मंच म्यूजिक हबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म का ये गाना।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता रॉय यानी गीता दत्त पर।
1: अभी मैं जवां, ए दिल, अभी मैं जवां।

स्वतंत्रता पूर्व भारत के बंगाल प्रांत का फरीदपुर, आज ये स्थान बांग्लादेश में है। यहीं समृद्ध जमींदारी थी देवेंद्रनाथ घोष राय चौधरी और उनकी पत्नी अमिया देवी की। 23 नवंबर 1930 को इनके घर जन्म लिया गीता घोष राय चौधरी ने। सन 1940 की शुरुआत में देवेंद्रनाथ का परिवार कोलकाता और आसाम स्थानांतरित हो गया। 1942 में गीता रॉय के माता पिता मुंबई के दादर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने आ गए। युवा गीता रॉय ने गायन की बारीकियां सीखी के हनुमान प्रसाद जी से। उन्हीं के संगीत निर्देशन में सन 1946 में गीता रॉय ने 16 बरस की उम्र में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए पार्श्व गायन किया। सन 1947 में गीता रॉय को गायन का अवसर मिला फिल्म दो भाई में, और इस फिल्म के जिस गीत ने गीता रॉय को रातों रात मशहूर कर दिया वो गीत था ये।

1947 में ही गीता रॉय ने अपने संगीत गुरु हनुमान प्रसाद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म रसीदी के लिए पार्श्व गायन किया। गीता दत्त जी की गायकी, उनका अंदाज बहुत अनूठा था। स्वर में भावों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। मिठास और मादकता उनके स्वर की विशेषता है।

0: गीता जी के स्वर में उम्र जैसे ठहर जाती है। लहकता बहकता उनका स्वर जब कानों से भीतर उतरता है तो तन मन भी लहकने बहकने लगते हैं।
1: जाता कहां है दीवाने, सब

फिल्म बाजी के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता जी अभिनेता निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में आई और 26 मई सन 1953 को दोनों ने विवाह कर लिया और गीता रॉय गीता

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मनोपचार सुखी संसार कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं मनोज सक्सेना आपके साथ हूं और मुझसे बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह ही मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। आइए आज के कार्यक्रम में आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सर नमस्ते।
2: नमस्कार श्रोताओं।
1: सर, पिछले जो एपिसोड्स हमारे रहे हैं उनमें बहुत सारे हमने सवाल जवाब किए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन विचारों पर भी हम चर्चा करेंगे, पर आज जिस विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं उसे निराशा कह सकते हैं या डिप्रेशन कह सकते हैं। आजकल डिप्रेशन शब्द बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे सर्दी जुकाम, किसी को भी अरे वो डिप्रेशन में आ गया है। डिप्रेशन क्या इतनी बला है?
2: देखिए, बहुत बड़ी बला तो नहीं है जी, जैसे आपने उसे जोड़ा कि सर्दी जुकाम बुखार की तरह। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन बीमारी है।
1: हाँ।
2: और दूसरा मतलब ये है कि ये ठीक हो जाती है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है यदि हम उसे नेगलेक्ट ना करें तो।
1: ओके,
2: है ना। अब सर्दी जुकाम या बुखार को नेगलेक्ट करो तो वो बिगड़ जाता है। साइनस की प्रॉब्लम, तो किसी को एंटरिक फीवर हो जाता है, तो बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसको कॉमन बीमारी समझा जाए कि ये बहुत कॉमन है। एंजाइटी और डिप्रेशन समझ लीजिए कि आज के जमाने में बोले तो सबसे कॉमन बीमारियां यही है
1: जी।
2: और दूसरी अच्छी बात यह है कि बाकी कॉमन बीमारियों की तरह इनका भी इलाज सुगम है, सटीक है और लंबी अवधि का नहीं है।
1: सर, जैसे किसी को हम कह देते हैं कि ये डिप्रेस हो गया है
2: जी,
1: तो एक जीवन में क्षणिक या कुछ समय के लिए वो निराश हुआ है
2: जी
1: और खुद ही रिकवर कर गया है
2: जी,
1: तो उसे क्या हम बीमारी मानेंगे?
2: देखिए, बीमारी का एक क्राइटेरिया होता है कि एक इतने पॉइंट, इतने बिंदु जो है यदि पूरे हो रहे हैं तब अच्छा, हम डायग्नोसिस करते हैं।
1: ओके।
2: सिर्फ थोड़ी सी निराशा हो गई या कुछ समय के लिए एंजाइटी या तनाव हो गया या कुछ समय के लिए हो गया, यदि बीमारी के लक्षण, कुछ लक्षण इकट्ठे कुछ हफ्ते, एक दो हफ्ते हो रहे हैं और इतने हो रहे हैं कि आपकी दैनिक दिनचर्या, आपके काम, आपके व्यवहार, आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, तब बीमारी बोलते हैं। ठीक है, बात निराशा की करते हैं तो देखिए, निराशा जैसे कि शब्द ही इंडिकेट करता है कि आदमी बहुत नेगेटिव हो जाता है। सेल्फ के लिए हो सकता है
1: बिल्कुल,
2: कि खुद से आशा बंद हो गई, या फिर दुनिया के लिए हो सकता है। तो कई तरह से हो सकती निराशा भी, है ना। सेल्फ के लिए ये कि मैं गलत हूँ, मैंने सब कुछ नेगेटिव किया है, मैंने कोई सक्सेस नहीं पाई है, हर चीज में वो अपने आप को नेगेटिवली लेता है और कोई छोटी भी गलती हो गई तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट या ग्लानी फील होती है, फिर वही सोचते रहता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सब गलत है, सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, कोई मेरा नहीं है, है ना, तो वो भी नेगेटिव तो माइंड में बात आ रही है।
1: सर, एक सवाल बहुत सभी लोग जो सुन रहे हैं उनके मन में भी रहा होगा कि एक व्यक्ति है, बोल्ड है, जिसे कहते हैं ना कि ढांसू व्यक्ति है, समाज में उसकी अपनी पहचान है
2: जी,
1: सब कुछ करते हैं और हमने देखा भी है कि बहुत बड़े बड़े नामी लोग अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं
2: जी।
1: ये क्या ऐसा हो जाता है दिमाग में या मन में उनके कि ऐसी स्थिति में आ जाते हैं?
2: देखियो, देखने की बात यह है कि कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। कोई बहुत अच्छा है, बिंदास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई बहुत ही फिट है, जिम में जा रहा है तो उसे बीमारी नहीं होगी। उसे भी तो बुखार हो सकता है, उसे भी

0: सर्दी जुकाम हो सकती है, उसे भी मलेरिया हो सकता है, वैसे ही ऐसे व्यक्तियों को भी डिप्रेशन हो सकता है। भाई उनके दिमाग में क्या प्रेशर आ गया है, कौन सी टेंशन चल रही है, परिवार में क्या चल रहा है, काम पे क्या चल रहा है, वो हमें नहीं पता है। अचानक बहुत ज्यादा ऐसा घटना घट जाती है कि दिमाग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो फिर कुछ तो चेंजेस होंगे ब्रेन में, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और लंबे समय तक स्ट्रेस रह रही है या फिर फैमिली हिस्ट्री है या कुछ सिचुएशन गड़बड़ हो गई, तो ट्रिगर कहीं से भी हो सकता है। तो ये बीमारी ऐसा नहीं है कि बिंदास आदमी हो गया है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। जा कोई भी सकता है, लेकिन निकल सभी आदमी।
1: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने, 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स, DIG बंगला चौराहा, भोपाल।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
3: बातों में इलाज की भी कर लेते हैं। इलाज किस तरह से शुरू होता है,
0: देखिए किस लेवल पे व्यक्ति आया है
3: जी,
0: है ना, डिप्रेशन का किस सीवियरिटी में है, ये माइल्ड है या बस शुरू ही हुआ है, तो कभी कभी काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। क्योंकि अच्छी बात यह है डिप्रेशन की कि ये आता जाता है, ये एपिसोडिक आएगा, जनरली 4 से 6 महीने का पीरियड होता है, कभी 3 महीने का भी हो सकता है। तो ये उसका पीरियड है कि इतना रहेगा यदि दवाई नहीं कराते, तो उसमें वो बिगड़ के दूसरी बीमारी में स्विच होके लंबा जा सकता है या फिर ठीक होके वो बंद हो सकता है, लेकिन दोबारा आने की रिस्क बहुत होती है। तो इसमें है कि माइल्ड है तो काउंसलिंग या एक आध गोली से काम हो सकता है, मॉडरेट है तो बहुत ज्यादा दवाई नहीं लगती है, सीवियर जनरली हमारे यहाँ क्या है, बहुत लेट आते हैं लोग, फिर वो निराशा, अकेली या उदासी लेके नहीं आते, फिर वो हतोत्साह इतना ज्यादा हो जाता है कि आत्महत्या के विचार तक लेके आता है। उसके बाद वो पूरा सब चीजों से बंद हो जाता है, इतना वो अपने बारे में या दुनिया के बारे में नेगेटिव हो जाता है कि उसे डिलूजन ऑफ निहिलिज्म कि सब खत्म होने वाला है, यहाँ तक हो जाता है, या फिर लोगों को वो दुश्मन भी समझने लगता है, या फिर वो इतना एग्रेसिव हो सकता है खुद के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ कि अब तो कुछ नहीं हो सकता तो मैं सब खत्म ही कर देता हूँ। तो बहुत सीवियरिटी में आता है तो फिर ज्यादा दवाई भी लगती है, इलाज भी लंबा चलता है और उसको सपोर्ट की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है।
3: सर मतलब कि अगर व्यक्ति सही समय पर काउंसलिंग ले ले तो संभावना है कि दवाओं की जरूरत ना ही पड़े
0: जी,
3: और अगर शुरुआत में आए हैं तो कम दवाएं
0: जी। देखिए आपको लग रहा है कि लगातार निराशा हो रही है, उदासी हो रही है, काम में मन नहीं है, किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही है, रुचि नहीं आ रही है, एनर्जी कम फील हो रही है, नींद ज्यादा होने के बाद भी फ्रेश फील नहीं हो रहा है या नींद आ ही नहीं रही है, या आपकी अटेंशन कंसंट्रेशन या कि ध्यान कम हो रहा है, याददाश्त कहीं मिस हो रही है, तो ये सब अवसाद के लक्षण हैं और ये लगातार हो रहे हैं, 2-3 हफ्ते से हो रहे हैं और आपके काम में आपकी खुशी में बाधा डाल रहे हैं, तब आपको आना जरूरी है।
3: सर बहुत सारे लोगों का एक स्वभाव होता है कि बहुत सहमे डरे हुए रहते हैं, जब भी वो काम करने जाएंगे तो उनके अंदर एक बड़ा संकोची भाव उनके जीवन में हमेशा देखा जाता है, कुछ भी खुल के नहीं करना है, बहुत सहमे हुए रहना है। ऐसे लोगों को हम आम भाषा में परिवार में ये कहते हैं कि बहुत सीधा है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जब मानसिक दबाव बढ़ता है तो क्या इनकी संभावना डिप्रेशन में जाने की रहती है?
0: ऐसे लोगों की थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो यदि कोई समस्या आ जाती है तो मन ही मन में कितना वो उसको क्लियर आउट कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को दूसरे जो लोग
3: जी
0: उनको ध्यान रखने की जरूरत है, उनसे बात करते रहें, उनसे पूछते रहें, आपको अंदाजा है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो ऐसे व्यक्तियों से खुद बात करें ताकि वो व्यक्ति डिप्रेशन जाने से बच सके।
3: सर क्या कोई ऐसी दवा आती है जो ऐसे लोगों को ऐसा बना सके कि वो बुखर हो जाए?
0: देखिए ये चीजें ऐसे, यदि स्वभाव आदमी का इंट्रोवर्ट है, चुपचाप रहता है, तो उसमें दवा की जरूरत नहीं है।
3: अच्छा।
0: उसे सपोर्ट से, उसकी काउंसलिंग से और उसको कुछ प्रक्रियाएं जैसे इन्वॉल्वमेंट उसका बढ़ा के धीरे धीरे लोगों की मदद से, घर वालों, दोस्तों की, तो उसको लाया जा सकता है, हर चीज में दवा की जरूरत नहीं होती,
3: जरूरत नहीं होती वाकई, क्योंकि स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता दवा के माध्यम से, पर हाँ अगर कहीं कोई मानसिक दबाव है आपके ऊपर तो उसको जरूर हटाया जा सकता है। श्रोताओं अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासाएं हैं, ऐसे सवाल हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9406925768। नंबर फिर सुन लीजिए 9406925768। अब मिलेंगे हम आपसे अगले सोमवार इसी समय, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे कटनी जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मॉनसून की। जिले में इस साल मॉनसून की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले काफी धीमी रही है। 1 जून से 19 जुलाई तक जिले में सिर्फ 245.4 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 606 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सलीमनाबाद में सबसे ज्यादा और बड़वारा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। अब बात एक और बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना की। कटनी के सलीमनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग अब लगभग पूरी हो चुकी है। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में सिर्फ 2 मीटर खुदाई बाकी है। सुरंग पूरी होने के बाद पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के सीधे विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। करीब 15 साल से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सुरंग के जरिए कटनी सहित जबलपुर, मैहर, सतना, पन्ना और देवास जिले के 1450 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। इससे करीब 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। अकेले कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर जमीन को पहली बार नर्मदा का पानी मिलेगा। जिला प्रशासन का ये कहना है कि परीक्षण के बाद अक्टूबर 2026 से पानी की आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कटनी जिले में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए दस्तक और स्टाफ डायरिया अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी की संयुक्त टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच कर रही है। बच्चों को ORS, जिंक की गोलियाँ, विटामिन ए और आयरन सिरप भी दिया जा रहा है। बारिश के पानी को बचाने के लिए नगर निगम ने शहरवासियों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील की है। निगम का कहना है कि बारिश के हर बूंद भविष्य के लिए बेहद कीमती है। घरों, दुकानों, संस्थानों और सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में पानी की कमी से राहत मिलेगी। कटनी जिले के ग्रामीण इलाकों में अब शौचालय निर्माण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिन पात्र परिवारों के पास अब तक शौचालय नहीं है, उनका सर्वे

0: किया जाएगा। ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए सरकारी सहायता भी दी जाएगी। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को नई सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि डीएपी की जगह 3 बोरी एसएसपी और 20 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे खाद का खर्च कम होगा और फसल को जरूरी पोषक तत्व ही मिलेंगे। एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी मिलता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। कटनी में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 37 पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर उन्हें जरूरत के अनुसार उपकरण देने के लिए चयनित किया गया। इसके बाद बरही और नीमरखेड़ा में भी ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। जिले के सभी पात्र दिव्यांगों का चरणबद्ध तरीके से परीक्षण कर उन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कटनी पुलिस को बेहतर कार्यप्रणाली के लिए बड़ी उपलब्धि मिली है। जिले के 13 पुलिस थानों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 2 एसडीओपी कार्यालयों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये सम्मान साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, बेहतर व्यवस्था और जनता के अनुकूल माहौल के आधार पर दिया गया है। आबाद पशुपालकों के लिए चलाई गई खास पहल की। कटनी जिले में 13 से 18 जुलाई तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग की टीमों ने 5,515 पशुपालकों के घर पहुंचकर आधुनिक पशुपालन की जानकारी दी। पशुओं की बेहतर नस्ल, संतुलित आहार और दूध उत्पादन बढ़ाने के आसान तरीके भी बताए गए। विभाग का कहना है कि आधुनिक तकनीक अपनाने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी और डेयरी व्यवसाय अधिक लाभकारी बनेगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, लोकगीत सुनें।

0: फरमाइशी लोकगीतों के फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोता भैया बिन्नारों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे हैं हम राजेंद्र नारायण तिवारी
1: और हम भैया जयशेखर। स्वीकार करो भैया हम दोइयों की
0: राम राम, राम।
1: और लेते हैं जो पहलो फोन। हेलो
2: हेलो
1: भैया, फोन करें लोकगीत सुनने में स्वागत है आपको। अपना नाम बताओ।
2: शिव प्रसाद, ग्राम बल्दुपुरवा, जिला पन्ना से सर।
1: मगर भैया आपकी बोली पन्ना जैसी तो नहीं लग रही है, तो हमें के पीछे का राज है वो बताओ हमारे लाने आप।
2: सर ये हमारा जो घर पड़ता है, गांव पड़ता है मेरा, तो बांदा जिला और पन्ना जिला के दोनों के बीच में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पन्ना है।
1: मगर बांदा में तो भैया बुंदेली बोलते हैं।
2: महोबा में बुंदेली बोली जाते, बांदा में नहीं बोलते, बांदा में मेरे जैसे बोलते
1: हैं। तो भैया हमें जब बताओगे कर का रहे हो आप?
2: सर मैं BSF में हूँ सर, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ पे मुस्तैदी से भैया ड्यूटी कर रहे हो आप? उतनी
2: ड्यूटी? जी अभी मैं तो ड्यूटी में हूँ सर, कैंप में।
1: अच्छा अच्छा, तो भैया का सावधानी रखत हो आप अपनी सुरक्षा के लाने और अपने देश की सुरक्षा के लाने सुबह और बता दो हमें।
2: बस अपना ड्यूटी करते हैं और बॉर्डर में रात में लाइट है।
1: हाँ हाँ,
2: तो बॉर्डर में घूमते रहते हैं।
1: हाँ हाँ,
2: राइफल लेकर के, और बस यही ड्यूटी है और अपने देश की सुरक्षा हो रही है इसमें।
1: और अपनी सुरक्षा के लाने कौन सी कोई कछु चीजें ऐसी लगाओ थो भैया जिनसे अपन को दुश्मन से कोई परेशानी ना हो?
2: ये ऐसा कुछ है नहीं, इस बॉर्डर में थोड़ा सा शांत टाइप का है।
1: अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है भैया, हम तो कहें अपने देश के सभी बॉर्डर शांत रहें और सब सुख चैन से रहें भैया, अपने पड़ोसी भी और अपन भी। अच्छा भैया, सुबह से क्या अपनी गतिविधियाँ शुरू हो जाते हैं? कितने बजे उठा थो? अपने आप को फिट कैसे रखा थो?
2: जी सुबह उठ जाते हैं 4:30 बजे।

या ए अटका के दो जवाब हैं और दो में से आपने एक दाव है और दो ही जवाब सही हैं, तो दीपक एकदम सही कह रहे हो भैया। और अगर दूसरे जवाब देते तो वो भी सही हो, तो अगर वो सही वालों देते तो अब बता दो कि लोकगीत कौन से सुनवा दे मैं आपको। भैया हरो जे हते अपने देश की सिपाही और इनको फोन हमसे बात कराते में कट गया है, मनो इनकी फरमाइश हम तक पहुंचती ओके पहले फोन कटो। सो हम इनको सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज में गाओ भाव जो बरसा गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
1: जी सर, राम शंकर बात कर रहे हैं, ग्राम बीचे
0: से। अच्छा, तो राम शंकर भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: बताओ भैया अपने बारे में कछु, का करत हो?
1: सर कछ नहीं मालूम, करत है मक्का की फसल लगा है सर, अभी पानी नहीं गिर रहा।
0: अच्छा, मतलब खेती करत हो?
1: जी जी, किसानी।
0: हाँ, तो बहुत अच्छी बात है भैया।
1: सर लोकगीत सुन रहे तो?
0: नहीं, लोकगीत तो सुनवा है भैया, लेकिन कछु बातचीत तो कर ली जाए।
1: हाँ,
0: तो फसल के क्या हाल है भैया?
1: फसल पानी मांग रही है सर, पानी गिर नहीं रहा, 8 दिन हो गए है।
0: भैया कितने एकड़ जमीन है अपनी?
1: अपने यहाँ तो 2-2.5 एकड़ है घर की।
0: तो मकई मका लगा दो का?
1: हाँ, मकई मका लगा है।
0: अच्छा, तो अब पानी नहीं गिर रहा भैया, तो क्या करो?
1: अब तो भगवान भरोसे चल रही है गाड़ी सर। मोटे छोटे सब फूल के रख लेंगे अपन ने।
0: अब देखो भैया, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अपन ऐसी किस्मों को चयन करें अब खरीफ में, अब हालांकि बुआई हो चुकी है बहुत से किसान भैयारों की।
1: जी सर।
0: कम पानी वाली किस्मों को चयन करें अपन और निदाई गुड़ाई कर देवे भैया, नमी को संरक्षित करवे के लाने।
1: जी।
0: और पानी गिर है भी भैया, जो मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं।
1: जी जी।
0: हफ्ता 10 दिन में भैया पानी गिर है।
1: इतनी तो सहज है अपनी फसल।
0: बिल्कुल भैया,
1: अबे तो हरियाली है।
0: चलो भैया, तो अब बताओ के फरमाइश का है आज के कार्यक्रम में?
1: अरविंद सोनी को मिलिए सर, मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो री दर्शन करिए।
0: चलो भैया, आपकी फरमाइश हम पूरी कर दे हैं, आपके लाने हम अरविंद सोनी को गाओ भाव जो लोक भजन तो सुनवा दे हैं।
1: जी सर।
0: और अब बारी आ गई भैया आज के अटका की।
1: जी सर।
0: सुनो ध्यान से भैया, कई बाबा सोवे जागर में और पांव पसारे बाघर में।
1: जो अटका तो सर हमने पहले सुनो, जीवन बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मौका पे।
0: नहीं आ रहा ध्यान?
1: जी सर, आप ही बता दीजिए।
0: चलो भैया ठीक है, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हमारे बते हैं और अब आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपके लाने सुनवा रहे हैं अरविंद सोनी को गाओ भाव जो लोकगीत। मन

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो,
2: जयराम जी साहब। जयराम जी।
1: जयराम जी भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है। अपना नाम बता दो।
2: मैं सर जगत सिंह चरार बोल रहा है सर, ग्राम पिपली अवराई तहसील बेगंज जिला रायसेन।
1: जगत भैया, हमें जा बताओगे, पानी तो भैया बहुत ही कम हो रहा है।
2: हाँ सर, हम आए थे तो अच्छा पानी गिरा, तो वह शुक्र से खुलो है।
1: अच्छा अच्छा, शुक्रवार से खुलो है। तो भैया खेती यती है अपनी?
2: हम की कराते हैं सर।
1: और हम तो जा कर भैया, खेती नहीं भी हो और बारिश नहीं हो रही है भैया, तो उमस भी बढ़ जाऊ थे।
2: भारी गर्मी पड़ रही, हवा भी चल रही है, तो भी गर्मी लग रही सर।
1: हाँ, तो जगत भैया हमें जा बताओ कि बरसात में तो झिरना फूट पड़ा होंगे आपके गांव के आसपास?
2: हाँ, रोडों के बगलों में हो।
1: हाँ, यानी जो देते भैया कि गर्मी में जब आदमी पानी को तरस जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाते हैं, तो अपन जब उम्मीद करते कि रिमझिम रिमझिम तो कम से कम गिरते ही रहे पानी, और आदमी खूब पिकनिक भी मना लेते हैं खुशी खुशी परिवार सहित, रिश्तेदारों के संगे, दोस्तों के संगे घूमे भी निकल जाते हैं भैया, मनो ये बार तो अपन को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है भैया,
2: गर्मी से पानी नहीं गिर रहा।
1: हाँ,
2: जैसे हम आए थे तो सर अच्छा पानी गिर गया, तो नदी कर गई, हर दिन ही नदी कर गई, 8 दिन तक रेगुलर
1: करो। ये तो अच्छी बात बता रहे भैया।
2: और सर अटका बोल देते हम दिमाग में आने लगे,
1: अटका है भैया के बाबा सोबे जा घर में, पांव पसारे बाघर में।
2: हम बता रहे सर, वो है वो जो पहले जमाने, मतलब कछु दिन पहला केवार में लगाते।
1: क्या लगाते?
2: लकड़ एक ऐसा लंगड़ के थे उसे पेड़ा।
1: अरे वाह भैया वाह, बहुत ही अच्छी बात है भैया। और हम आपको बता देवे कि एक के पहले जो श्रोता ने जवाब दो तो उनने एक और दूसरा जवाब दो तो वो भी सही है, और जो भी सही है एक अटका के एक बार दो जवाब सही है।
2: जी सर।
1: तो अब बता दो भैया, जगत भैया के लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
2: तेरो सुना दू रामचरण यादव को।
1: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोग गीत सुने।
3: हाँ, मैं ग्राम पोस्ट बरेटी से बोल रहा हूँ, टुंडे अहरवा।
2: टुंडे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में।
3: बहुत बढ़िया सर।
2: बताओ भैया, क्या हो रहा हो?
3: घर ही वैसे बोनी होनी करके पास।
2: बोनी हो गई?
3: हाँ।
2: अच्छा, और भैया पानी यानी कैसे गिर रहा हो?
3: पानी तो अब सर अब 4-5-6 दिन से नहीं गिर सर।
2: ब्रेक लग गया भैया मानसून में।
3: हाँ जी।
2: तो भैया फसलें कैसी हैं अबे?
3: फसलें तो अभी सही जमना जम हुए हैं।
2: अच्छा, जमे आओ?
3: हाँ।
2: तो भैया पानी की कमी से दिक्कत तो नहीं हो रही?
3: ना अभी तो नहीं हो रही अभी हाल में। हाँ।
2: अब भैया उम्मीद है हालांकि हफ्ता में पानी गिर है।
3: हाँ, पानी तो गिरेगा सर।
2: तो जब तक भैया अपन निंदाई गुड़ाई को काम कर लीजिए।
3: और का
2: है ना। चलो भैया, और सब बढ़िया है?
3: और तो बिल्कुल सब बढ़िया है सर।
2: तो टुंडे भैया आप बताओ फरमाइश।
3: अच्छे से लोग की सुनने सर मुझे तो।
2: नहीं, सब अच्छे से लोग की थे भैया, आप तो कलाकार को नाम बताओ।
3: जी हमें द्रुप यादव को लोग की सुनने, कोई भी सुनवा दो।
2: चलो भैया ठीक है, आपकी फरमाइश तो पूरी कर दे अभी।
3: जी जी।
2: और अब बारी आ गई अटका की।
3: अब बने तो सर बता देंगे।
2: बन जाओ चाहिए भैया।
3: हाँ।
2: तो सुनो ध्यान से भैया।
3: हाँ सुन रहा है।
2: कई बाबा सोवे जागर में।
3: हाँ।
2: और पाँव पसारे बाघर में।
3: बागोर तो नहीं सर?
2: हैं?
3: बागोर
2: क्या सो बागोर? बागोर का कहा?
3: हाँ बोलियो सर फिर से।
2: कई बाबा सोवे जागर में और पाँव पसारे बाघर में।
3: नहीं आ रहा समझ में सर।
2: नहीं आ रहा हो? चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनाते रहो। कार्यक्रम के अंत में हम और बते हैं, और अब आपकी फरमाइश पे आपके लाने सुनवा रहे हैं द्रौपदी यादव और उनकी सखियों को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम।

0: जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: जी सर, ग्राम देवपुर से बोल रहे हुकम चंद यादव।
2: भैया देवपुर कहाँ पे है अपनो?
3: जी सतारपुर जिले में है।
2: अच्छा अच्छा, तो क्या कर रहे हो हुकुम भैया?
3: जी सर बस खेताई पे बैठे हैं सर जी, खेती हो चुकी है।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: तो अपने बढ़िया भैंसे हैं और ऐसा ही अपने खेत देखे।
2: अच्छा अच्छा,
3: बारिश हो रही।
2: और भैया बारिश के हालचाल?
3: बारिश तो सर जी 8-8 दिन से भाई नहीं, अब जरूरत भी आ गई फसल की लाने।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: अब भाई नहीं है, गर्मी पड़ रही।
2: अच्छा भैया, तो भैया रोजी रोटी तो अपनी यही है, पशुपालन और कृषि?
3: जुड़े हैं।
2: हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी बात है भैया। तो भैया हमारे देखिए कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हो आप?
3: पूरे चल रहे सर जी कार्यक्रम, फोन कहे लोकगीत सुने, जो किसान वाणी सुनते हैं ज्यादा, गुरुवार को फोन भी लगाते हैं आकाशवाणी में।
2: अच्छा अच्छा, तो भैया उसे हमारे कार्यक्रम से फायदा कौन कौन से भाई, तो हमें बताओ थोड़ा सा।
3: जो विशेषक बताते हैं वही विधि से अपन खेती करते हैं, उसमें लाभ मिलता है।
2: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि आपको लाभ भी मिल रहा है। तो आप जानते ही हो कि हम एक अटका भी पूछा था भैया अपने कार्यक्रम में। तो ये बार हम अटका पूछ रहे हैं आपसे कि बाबा सोवे जा घर में और पांव पसारे बाघर में।
3: नहीं आ पाई सर जी समझ में।
2: काय नहीं आ रहा भैया?
3: नहीं समझ में आ पाई।
2: चलो भैया कोई बात नहीं, तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा है सुनने आपको?
3: लोकगीत राम सहाय पांडे का सेवा सुना देना सर जी।
2: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, राम सहाय पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोग गीत सुने।
1: बसंत पटेल बसिया गंगे।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: तो बसंत भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: बताओ भैया का काम करा तो?
1: सर कछु नहीं, घूमत रहे थे।
0: कहाँ?
1: सर तमिल सागर जाते हैं काम पे, मजदूरी पे।
0: चलो तो बड़ी अच्छी बात है भैया। कौन सो काम करा तो मजदूरी में?
1: सर कछु नहीं, मिस्त्री के लिए कहाँ से मकान बना थे।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: बहुत अच्छी बात है भैया। तो मकान बनावे में भैया कौन कौन सी बातों को ख्याल रखा थो?
1: सर मकान बनाने में मुझकी बातों को ध्यान रखना पड़े, जैसे ईट को ध्यान रखना पड़े, ईट अच्छी छत रही के नहीं, और मसाले को सीमेंट को सब को ध्यान रखना पड़े सर।
0: तो भैया जब बताओ के जो जुड़ाई के लाने मसालों बना थे वो का हिसाब से बनाओ जात?
1: सर दीवार के हिसाब से बना, 6 इंची को, 3 बोरी को।
0: चिनाई के हिसाब से अलग बना दू, पलस्तर के हिसाब से अलग बना दू ये?
1: जी सर।
0: चलो भैया तो बड़े अच्छे काम से जुड़े हो आप।
1: जी सर।
0: और अब जा बताओ भैया के फरमाइश का है आपकी?
1: सर त्रिभुवन सिंह अनुज की गाय भाई तजरी सुनवा दो।
0: अरे वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छी फरमाइश करी है मौसम के हिसाब से।
1: जी सर।
0: कजरी आपको जरूर सुनवा दे हैं। और अब सुन ले भैया आज को अटका।
1: जी सर।
0: बते हो?
1: जी सर, बोले तो बते से।
0: तो सुनो भैया ध्यान से।
1: जी सर।
0: कई बाबा सोवे जा घर में।
1: जी।
0: वो पांव पसारे बाघर में।
1: बाबा सोवे जागर में?
0: गागर में नहीं, हमने कही बाबा सोवे जा घर में।
1: बाबा सोवे जागर में?
0: वो पांव पसारे बाघर में।
1: पांव पसारे बाघर में?
0: हाओ।
1: संकेत दो सर।
0: संकेत भैया ऐसा है कि पुरानी चीज है और घर की सुरक्षा से संबंधित है भैया।
1: सर वो नहीं बन रहा
0: हूँ। गाँव खेरे में भैया पहले घरों में लगे रहते जी।
1: जी सर।
0: अब तो कम देख भी मिला तुम्हें।
1: सर हम नहीं बन
0: रहा वो। चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हम बते हैं। और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं प्रभु सिंह अनुज की गाय भाई जा कजरी।

0: हेलो
1: हेलो
0: भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
1: हाँ, जय बजरंग रेडी को सोता था बस तेन बंडा भी लेके लक्ष्मण को चाय वाले हो रहा था, चाय पी लो।
0: बस भैया खूब चाय पियो, और अब तो चाय को सीजन आ गया है, गर्मी थोड़ी सी कम हो रही है मगर उमस बढ़ रही है।
1: हाँ हाँ, उमस तो बड़ा है, पानी नहीं कर रहे अब तक, हाँ। दो चार पानी लगातार गन्ना है।
0: बिल्कुल
1: सही है।
0: तो भैया हमें जब बताओ कि लोग बागों की रुझान का रेत है चाय के लाने, उमस जब हो जाते हैं तो फिर दिक्कत सी हो जाती बहुत ज्यादा।
1: नहीं, उमस में हो जाता पिया था आदमी, गर्मी हो गर्मी आ रहा।
0: और चाय कम कब पिया थे?
1: जब बस खा रहा लगा था, जब भाई कम होते था ना, पानी गिर गया तो ना पिए आदमी।
0: हाँ, जा भी बात एक सही गई है, आवे में दिक्कत हो जाते है।
1: हाँ, ना तो अपनी 12 महीने एक्टिव करते।
0: अच्छा भैया हमें एक चीज बता दो कि जब आप लोग चाय बनाऊ थो तो बड़ी स्वादिष्ट चाय बनाते है, और जब घर पे बनाते हैं तो वो स्वाद काय नहीं आता है, तो हमें आज रहस्य बता दो कैसे बनाऊ थो चाय, तो हमारे सब श्रोता सुन लें कि अच्छी चाय कैसे बनने हैं।
1: चाय देखो क्या है, घर तो जैसी चाय बना रहे पपन पियाना तो नहीं है कोई।
0: हाँ,
1: घर ही के पीने तो जैसी चाय बना लेते हैं, पानी भी ज्यादा डाल रहे, दूध से बनती है चाय, दूध की मात्रा चाहना है अच्छी।
0: हाँ,
1: चाय दे रहे बिल्कुल कच्ची।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया, अब हम ऐसी चाय बना के देखें और हमारे सभी श्रोता। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका। अटका बहुत सरल है।
1: हाँ,
0: अटका कह रहा है कि बाबा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में।
1: ये तो हमें समझ में नहीं आ रही।
0: कोई बात नहीं भैया, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुना देवे।
1: जयंत विश्वकर्मा को सुनवा देना लोकगीत शेरो।
0: ठीक है भैया, सुन लो भैया। हाँ, अपनी फरमाइश पे जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाओ जो लोकगीत।
1: हाँ।

0: हेलो
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
1: जी सर,
0: कुआ बोल रहे भैया, आपनो परिचय दो।
1: हम छोटन से सोलंकी ग्राम कुआला से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, छोटन से सोलंकी।
1: जी
0: तो छोटन भैया कितनी उम्र हो गई अपनी?
1: 26 सितंबर हम 60 के पूरे हो जाए।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: तो का काम काज से जुड़े भैया?
1: हम खेती करा थे सर।
0: अच्छा, तो बुआई वुआई हो गई?
1: जी सर बुआई तो हो गई, लेकिन जो पनवेसरो पानी नहीं हुआ सर।
0: अब का करिए भैया, पनवेसरे पानी के लाने हैं, अपने ही जिम्मेदार हैं भैया। अपन देखो पर्यावरण के लाने कितनों नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिनों दिन वृक्षों की कटाई कर रहे हैं।
1: हम तो अपने खेत की मेड़ों पे कछु भाटी में वृक्ष रखाया है।
0: बहुत अच्छी बात है भैया, आप वृक्ष लगा तो है तो सबई को लगाओ चाहिए भैया। अकेले आपके लगाए से और हमारे लगाए से नहीं होने कछु
1: कछु नहीं होते। अब अकेले लगाते एक आदमी कुछ नहीं कर सकता।
0: चलो भैया ठीक है, आप अच्छो काम कर रहे हो वृक्षारोपण करके। और जा बताओ के आज फरमाइश का है?
1: इंद्रपाल विश्वकर्मा को लोकगीत सुनवा दे सर।
0: चलो भैया ठीक है, इनको गाओ भाव एक वर्षा गीत आपको सुनवा दे हैं।
1: जी सर।
0: और अब बारी आ गई अटका की।
1: जी सर।
0: तो अटका बताओ भैया।
1: अब बन है तो बता दे अभी।
0: हाँ देखो, उम्मीद कर रहे भैया, आप बुजुर्ग हो तो आपसे उम्मीद कराते हैं भैया कि जा चीज आपने देखी भी हुई है और बता भी पे हो। कई बाबा सोवे जाघर में और पाँव पसारे बाघर में। अरे वाह,
1: लंगर यार सर, लंगर।
0: लंगर मतलब का?
1: जो किवारों में लगा उसे।
0: हाँ
1: किवारों में लगा दी थे बेड़ा।
0: बेड़ा आपने अब कही सही, तो बिल्कुल सही उत्तर बताओ भैया आपने ये अटका को। बेड़ा अपन एको कहने लगते एक बड़ो सो लट्ठा हो तो
1: जी,
0: जो किवारों में भैया सुरक्षा के लाने लगाओ जात तो।
1: हम आए थे तो सर्दी हाथ में तो लंगर ही किए थे।
0: हाँ कहूँ लंगर कहते हैं भैया, कहूँ बेड़ा कहते हैं।
1: जी सर।
0: लेकिन भैया सही नाम तो बेड़ा ही है।
1: बेड़ा तो आई।
0: चलो बहुत अच्छो लगो भैया आपसे बात करके।
1: जी सर।
0: और अब आपकी फरमाइश पे आपके लाने सुनवा रहे हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: तो जयशेखर भैया, अपन कार्यक्रम के समापन की तरफ आ गए हैं।
1: बिल्कुल भैया, मनो हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि अटका कहतो और अटका को जवाब कहतो। तो भैया बड़ी रुचिकर बात जा है कि आज की जो अटका हतो, बाबा सोवे जा घर में और
0: पांव
1: पसारे
0: पसारे
1: बाघ
0: बागर
1: में।
0: में।
1: तो भैया एक ही दो जवाब हो रहे थे और हमने दोइयों को मान्यता दी।
0: बिल्कुल भैया, एक
1: और
0: जवाब तो हतो दिया,
1: हाओ,
0: तो एक श्रोता ने दिया भी बताओ,
1: हाँ,
0: और एको जो गांव खेरे में चलते आओ है, एको सही उत्तर बेड़ा भी है,
1: हाओ,
0: जेको कछु जने लंगर भी कह रहे हैं,
1: हाँ
0: तो जो भी सही जवाब है।
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
0: और बेड़ा को भी अपन समझा देवे भैया, दिया तो सब जने जानत है।
1: हाँ, कि एक कमरा में रख दो और

0: दरवाजे खुले हैं तो वो कमरा तक रोशनी चली जाऊ।
1: और बेड़ा ये हिसाब से सही है भैया कि दरवाजे की सुरक्षा के लाने पहले के जमाने में भीतर तरफ दो ही दीवालों में छेद बनाए जाते और लकड़ी के बड़े से लट्ठाखों उन छेदों में फंसाओ जाते, तो जैसे दरवाजे की एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा हो जाती। तो वो हिसाब से एक सही उत्तर बेड़ा भी है। तो जो है तो आज को अटका और कछु श्रोताओं ने एको सही उत्तर भी बताओ। और अब हो रही है चलबे की बेरा। तो चलबे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी
0: और हम भैया जयशेखर,
1: और कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जयशेखर की। और जयशेखर भैया अब अपन सभी श्रोताओं से ले रहे हैं आज्ञा और करते हैं
0: राम राम, राम।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच

0: पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी तो श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष

0: तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
0: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
0: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
0: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
5: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
5: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
5: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
5: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
6: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
5: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
6: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
7: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
8: गद्दी पे बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: इसके पास
9: जा रहा है।
6: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
6: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ।

0: आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता, रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न

0: प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता।

0: जी पिताजी।
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
0: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
0: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
0: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
0: जीतात
1: उसी

0: को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है
1: जी। पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उस

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

हम सुन रहे थे ये गीत ट्रैफिक सिग्नल से, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में। कैलाश शर्मा ने इसे लिखा है और संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस सॉन्ग ब्रीदलेस एल्बम से शंकर महादेवन की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया शंकर महादेवन ने और लिखा जावेद अख्तर ने।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

हम सुन रहे थे जान एल्बम का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, जिसे बोल दिए फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।